छोटी छोटी तकरारों में, रोका टोकी वाले यारों में, छुपे छुपे से इशारों में ही जिंदगी है कहीं।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में।
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

Welcome back after yet another beautiful song on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा. मतलब Sunrise Radio आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं. I hope आपको पता है. Well, DAB के जरिए आप सुन सकते हैं in Manchester. At the same time, दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है and then there you go. इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं. और जो हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा. सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और the beam, beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी ही होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पर नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की जरूरत नहीं. जस्ट अ थॉट. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Nothing like the golden oldies. But right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. कहीं ना आप जाएगा. I'll see you on the other side of this hour. Stay tuned.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: गिरिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Move for 10 is here, the new challenge from Disco Can that everyone can join. Move for 10 minutes, 10 times a month. I've got more energy. I feel more confident. I'm sleeping better. From a stretch in the morning to a brisk walk around the park. No pressure, no strict schedule. Just move when it suits you. I've logged 3 sessions already. And I'm feeling good. Women across the country are moving for 10 minutes, 10 times this month. To join, search This Girl Can Move for 10.

0: क्या हुआ, गाओ ना।
1: नहीं, आज मूड नहीं है।
0: मूड नहीं? अरे रियाज नहीं करना है क्या?
1: गाना मेरे बस की बात नहीं है।
0: तो फिर यही गाओ।
1: क्या?
0: गाना मेरे बस की बात नहीं। अरे हंसो मत, गाओ।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: case files of Miss Maureen 118212.
1: It was a dark and stormy night. Or perhaps it was a stormy and dark night. Either way, it wasn't very nice. I was in the study when suddenly the phone rang. It was a gentleman from Porlock, and he needed a phone number pronto and straight away. I leapt into action and found the number immediately. Well, they don't call me Maureen 118212 Directory Inquiries for nothing, you know.
2: Maureen 118212.
0: Calls cost £2.50 per call plus 75p a minute with a minimum 1 minute charge plus your phone company's access charge. Sunrise Radio.
3: हजारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ नाही जट्ठा आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर है। जी हाँ, मेरा प्रोग्राम हुआ करता है एवरी सैटरडे, यानी कि हर हफ्ता के रोज 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी कि फ्रॉम 11 टू 2। जी, इस प्रोग्राम में आपको तो मालूम है जो रेगुलर लिसनर्स हैं कि हम बात करते हैं और हम अच्छे अच्छे से गीत सुनते हैं, कुछ शायरी होती है, कुछ आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं और फिर लास्ट आवर होता है हमारा डिस्कशन आवर। और डिस्कशन आवर में समटाइम्स हमारे साथ कोई मेहमान होते हैं जो कि किसी ख़ास टॉपिक पर बात करते हैं। लाइक मैं कोशिश करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं उनको मैं लेकर आऊं और आपसे बात करवाऊं। इसके अलावा ये होता है कि आपके सवालात, हमारे जवाबात, या हमारे पास जब कोई मेहमान मौजूद नहीं होता तो फिर हम एक टॉपिक पे बात करते हैं और आपकी कीमती आरा से हम मुस्तफीद होते हैं, आपके कीमती ख्यालात से हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम सब मिलकर उस टॉपिक पर बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ माई फेवरेट आवर ऑफ द शो। समीन, एक दफ़ा फिर बता दूं, आपको जानते ही होंगे कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 FM और 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डैब पर जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में। जनाब, अगर आप इन चैनल से हम तक नहीं पहुंच सकते या हम आप तक नहीं पहुंच सकते तो जनाब आप सुन सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट www.sunrise.radio। समय इसके अलावा एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून। सनराइज रेडियो लिस्टर चॉइस अवार्ड 2026 जल्द ही आ रहा है। सेलिब्रेट करने के लिए बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट्स यू लव, आप वोट कर सकते हैं। वोटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जनाब? वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर्स क्लब मेंबर्स, वो सिर्फ लिसनर क्लब मेंबर्स के लिए होगी। तो आपने अगर लिसनर क्लब मेंबर बनना है सनराइज रेडियो का तो ज्वाइन कीजिए सनराइज रेडियो sunrise.radio पर, और ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप sunrise.radio पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लिसनर्स क्लब मेंबरशिप की ऑप्शन को दबाइएगा और फिर आप फॉर्म करके हो जाइएगा मेंबर और फिर आप वोटिंग कर सकते हैं। समय, प्रोग्राम का आगाज है और सोचा कि आपसे इससे पहले कि वाजिद भाई हमको फ़ोन करके कहें और कहें कि जी मुझे पंजाबी की शायरी सुना दें, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही सुना देती हूँ और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने हिट ऑफ द आवर की जानेब। तो क्या कहते हैं जी, की कहंदे ने जी, कुछ ना करिया मुदता होइया, कुछ ना करिया मुदता होइया, दिल नू भरिया मुदता होइया, ਸਾਡੇ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਂ ਮੀਨ ਜਬ ਹਾਰ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਂ ਹਾਰਨੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਮੁਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਰਿਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਬੈਠਤੇ ਹੈ ਹਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ ਕੀ ਜਾਨਬ ਔਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹੀਏਗਾ ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏਗਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਰੇਡੀਓ
4: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
5: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: होना ही था, होना ही था एक राजा की तुमको रानी जी। क्या कहते हैं ना कि जो गीत होता है वो क्या करता है, सिचुएशन को इन्हेंस कर देता है। ऐसा ही होता है जब हम गीत सुनते हैं खुशी के मौके पर, खुशी के गीत गाते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन को इन्हेंस करता है। और इसी तरह ऐसा होता है कि सम पीपल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अफसुरदा होते हैं, सैड होते हैं, तो बजाय उसको वो ख़त्म करने के वो मज़ीद सैड सॉन्ग्स सुनना पसंद करते हैं। वो ऐसा करता है कि जब उस सिचुएशन को इन्हांस करता है तो वो उस सिचुएशन से निकलने में उनको जल्दी होती है, यानी कि फिर ऐसा होता है कि वो जल्दी उस सिचुएशन से निकल जाते हैं जी। अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट दोस्तों के साथ रह के छोटी छोटी सी बातें मैंने भी सीख ली। तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, बहुत सैड होते हैं, सैड गज़लें, सैड सॉन्ग्स, गीत सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा आजकल भी वेदर है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल शादियों का वेदर शुरू हो गया है और यहाँ पे भी ज़ाहिर है हमारे रिश्तेदारों के यहाँ हो रही होती है, तो हमें यहाँ पे खुशी होती है, तो अच्छा गीत था सिचुएशन को इन्हेंस करने के लिए। तो क्या है कि आपको लिए चलते हैं हम टाइम चेक की जानिब, और फिर टाइम चेक के बाद जनाब हमारी एडवर्ट ब्रेक होती है, और एडवर्ट ब्रेक के बाद आपको एक और खूबसूरत से गीत के साथ मिलेंगे। वाजिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, एंड आप हमेशा सराहते हैं प्रोग्राम को, हमेशा पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सामिन करते हैं टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी जनाब, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:14 और कुछ ही सेकंड्स में, 2-3 सेकंड में अब हो गए 11:15, यानी कि 11:15। सवैया ना हो गए ना जी। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it won't be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz Vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
7: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
8: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
7: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
8: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

जी सामाइन, आपने एडवर्ट ब्रेक सुनी और अब हम आपको चंद अशआर सुनाएंगे, फिर अपने अगले गीत की जानिब बढ़ेंगे। इंजॉय कीजिएगा ये अशआर। सांप भी हैं, सांप भी, बीन भी, मदारी भी। सांप भी, बीन भी, मदारी भी, हाय क्या बात है तुम्हारी भी। कैसे करते हो यार माइक पर, कैसे करते हो यार माइक पर, शायरी भी, दुकानदारी भी। हम वली तो नहीं खुदा से, मगर जान पहचान है हमारी भी। सिर्फ दिल का मामला ही नहीं, सिर्फ दिल का मामला ही नहीं, इश्क है एक जिम्मेदारी भी, अगर कोई समझे तो। सिर्फ दिल का मामला ही नहीं, इश्क है एक जिम्मेदारी भी। हार कर फूल तेरी खुशबू से, ढूंढ लेते हैं रिश्तेदारी भी। वो जो पिछली कतार में खुश था, क्या शेर है कमाल का। वो जो पिछली कतार में खुश था, आ गई आज उसकी बारी भी। हम भी एक साथ करते थे खाकसारी भी, शाहसवारी भी। आप खामोशियां भी सुनते हैं, क्या बात है। आप खामोशियां भी सुनते हैं, आह सुन लीजिए हमारी भी। क्या मज़े के ये अशआर हैं, फहमी बदायूनी के ये अशआर हैं और उम्मीद है आपने पसंद किए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले गीत की जानिब, जिसमें मैं हमेशा कहा करती हूँ आय हाय, ये मैं क्यों कहा करती हूँ अभी सुनिएगा। आय हाय

हाय जी सामीन, आपने बहुत खूबसूरत गीत सुना। आय हाय, इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब। जी, इंजॉय कीजिएगा।

0: हम हो गए तुम्हारे बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और जी अब कुछ एक डेढ़ मिनट के बाद हमारी कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारा होगा जनाब इवेंट्स डायरी, डायरी के बाद पंजाबी गीत होगा शाजिया मंजूर की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बशारत जी आपके कॉल करने का, प्रोग्राम की तारीफ करने का। सर आंखों पर थैंक यू सो मच, आप कॉल करते हैं हमारा हौसला बढ़ जाता है। जनाब जो गीत है वो हम आपके नाम करेंगे, जो पंजाबी का गीत है शाजिया मंजूर की आवाज़ में आजा सोनिया, और पंजाबी का गीत है तो फिर पंजाबी दी शायरी तो बनती है ना। जल्दी जल्दी में क्योंकि हमारा कमर्शियल ब्रेक का टाइम होने वाला है, तो अशार कुछ यूँ हैं, तेरे दो नैन हंसते ने गली दे लोक दस्ते ने, बिना बारिश दे धरती ते गड़े कई रोज वस्ते ने, तेरे पैरां दी पायल जो करे छन छन छना छन छन दिलां दे तार वजदे ने, जीवें कोई प्यार दी सरगम मोहब्बत इंज परस दिए, जीवें किणमिण जीवें रिमझिम, जरा को वक्त होवे ते दिले दा हाल दसनाए, अजे एक इश्क है बाकी इजे एक गीत लिखना है, अजे एक नज्म रहंदी है अजे मैं नामुकम्मल हाँ, जरा तफसील है बाकी मेरी तकमील है बाकी, तेरे दो नैन हंसते ने गली दे लोग दसते ने। जनाब पंजाबी दे चंद अशार, इन अशार दे नाल ही वधने आ असी अपनी कमर्शियल ब्रेक दी जानेब। कमर्शियल ब्रेक तो बाद इवेंट्स डायरी ते फिर पंजाबी दा गीत मोहम्मद बशारत जी तुहाडे नाल करांगे आज आ सोणिया शाजिया मंजूर दी आवाज़ च। इंजॉय करियो।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: आ जा सोनिया घर आ जा सोनिया। जी हाँ, पंजाबी दा गीत तुसी सुनिया, तनु पसंद आया होएगा। जी हीरा खान जी, आपसे बात हुई, थैंक यू वेरी मच फॉर द टेलीफोन कॉल। तो आपका जो फेवरेट गीत है वो जी कोशिश करती हूँ मैं इस ब्रेक के दौरान ढूंढूं और फिर हम फ्लैशबैक के तौर पर पेश करेंगे। जी वो जो जो भी फ्लैशबैक के तौर पर गीत होगा हम जो पेश करेंगे वो हीरा खान जी के तमाम दोस्तों के नाम, जो अभी दोस्त हैं, जो अब कभी दोस्त थे, जो आइंदा दोस्त बनेंगे, सब के नाम, और हीरा खान जी आपके नाम भी। तो ऐसे करते हैं सामिन, हम टाइम चेक कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक की जानिब, फिर होगा हमारा फ्लैशबैक गीत। बढ़ते हैं टाइम चेक की जानिब।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी टाइम हुआ जाता है हमारी स्टूडियो की घड़ियों पर 11:44, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 11, चंद ही सेकंड में 45 मिनट्स होने वाले हैं। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद फ्लैशबैक गीत, जो कि हीरा खान जी के दोस्तों के नाम और उनके नाम। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
2: Sunrise Radio. Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

इतना क्यों सताते हो, होगा होगा होगा कितना मजे का गीत था, आई रियली एंजॉयड दैट जी। ये गीत हमने पेश किया जनाब हीरा खान साहब की फरमाइश पर उनके तमाम दोस्तों के नाम। तारिक जुल्फी जी, अगला गीत हम करते हैं आपकी फरमाइश पर आपके तमाम दोस्तों के नाम, इंजॉय कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, देखते हैं कैसी रहती है ये मुलाकात।

0: आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। ये गाना जो है, ये गीत जो है, मेरे जहन में बेशुमार सवालात छोड़ जाता है। अभी पहली मुलाकात होनी है तो इससे पहले बात यहाँ तक कैसे पहुँची? इंटरनेट का कमाल है या कुछ और? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? जी सामिन, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। तो ऐसा है कि हाजरा जी, आपने गीत की फरमाइश की और वो गीत तो हमें मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज जो लोग फरमाइश कर रहे हैं मुझे वो गीत मिल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पर दोबारा ऐसा ना हो जाए कि ना मिलें, तो मुझे गीत मिल रहे हैं। मुझे गीत तो मिल गया है, लेकिन ऐसा है कि टाइम कम रह गया है खबरों में, तो वो फिर गीत को इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर एक दो लाइन सुनी और फिर खबरों का टाइम हो गया। तो ऐसा करते हैं, वो गीत हम नेक्स्ट आवर में प्ले करते हैं। अब क्योंकि एक मिनट है हमारी खबरों में, तो एक मिनट पे मैं आपको चंद अशआर सुनाती हूँ, उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने न्यूज़ ब्रेक की जानिब। तो कहते हैं जनाब, किरदार मुख्तसर था कहानी में हम भी थे, दो चार दिन तो किस्सा फ़ानी में हम भी थे, राय बनाने वाले ज़रा रफ्तकां से पूछ, कुछ आयनों का ख्वाब जवानी में हम भी थे, फिर जिंदगी ने दफ़अतन मतला बदल दिया, फिर जिंदगी ने दफ़अतन मतला बदल दिया, पहले पहल तो मिसराए सानी में हम भी थे, दीवार पर लगा के हटाई भी उसने खुद, तस्वीर थी पुरानी, पुरानी में हम भी थे। ये और बात है कि वो मशहूर हो गया, ये और बात है कि वो मशहूर हो गया, मजनू के साथ दश्त मकानी में हम भी थे। वाजिवा जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने न्यूज़ ब्रेक की जानिब, और न्यूज़ के बाद नेक्स्ट आवर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: Centre at midday. Former Manchester City midfielder Rodri says he believes in the innocence of the club. Reports suggest an independent tribunal's found City guilty of most of the 115 alleged breaches of Premier League financial rules. City have always denied wrongdoing and are reportedly planning to appeal the decision. The Spain captain says the players' achievements on the pitch can't be taken away.
3: It's not paid off by money, you know, it's paid with effort, with partnership, with, you know, being shoulder to shoulder every day. And yeah, we had a lot of success the years, and I can only tell you that everything was deserved.
2: Iran has proposed a deal to the US that would see the Strait of Hormuz reopened within a week. It insists America needs to meet its conditions. A memorial's going on display to pay tribute to victims of the infected blood scandal. It recognises more than 100 haemophiliac boys treated at a boarding school in Hampshire during the 1970s and 80s. They're now understood to have been subject to unethical research following the infected blood public inquiry. Donna Jones is the Police and Crime Commissioner for Hampshire and the Isle of Wight. She feels a national police investigation is overdue.
4: These men have been infected. They were children at the time, were infected with HIV, with hepatitis C and hepatitis B. They've not been able to have children. They've not been able to have normal intimate relationships with their partners. It has quite literally affected their lives.
2: Housing Secretary Angela Rayner says she's concerned about Labour's proposals to change visa rules. She told The Times it would be harder for foreign workers to secure permanent residency in the UK. Grass lawns across Britain have been left badly damaged after this summer's drought and heatwave. The Royal Horticultural Society says most should recover with rain, but patches that stay bare can be reseeded before November. And Robbie Williams has told fans he's broken-hearted after his concert in Peru was cancelled. The venue he was due to perform at was closed for safety reasons. That's the latest.
0: Oh, वेलकम बैक सामेईन, खबरों के बाद और प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी आयानू कहते हैं। जी आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डेपर जनाब आप सुन रहे हैं कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन। जनाब अगर आप इन चैनल्स के थ्रू हमें नहीं सुन पाते तो आप सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन www.sunrise.radio पर। और समीन अगर आप चाहते हैं कुछ फन, कुछ हल्ला गुल्ला तो विजिट कीजिए सनराइज प्ले एंड हेल्प राज टू रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज रेडियो रोश। जी टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर यू। सो चेक कीजिए कि आप कौन से बॉलीवुड कैरेक्टर के साथ मिलते जुलते हैं। बॉलीवुड क्विज में हिस्सा लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा सनराइज रेडियो पे प्ले करने के लिए सनराइज लिसनर्स क्लब का। जी हाँ, आप सनराइज लिसनर क्लब को जब ओपन करेंगे, अनलॉक करेंगे तो आपको मजीद मालूमात हासिल होंगी। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कम्प्लीटली फ्री है और आप फ्री में सनराइज रेडियो लिसनर्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं sunrise.radio पर। एक दो फिर आपको याद दिला दूं कि मैं हूं नाही चट्ठा, मेरा प्रोग्राम हुआ करता है एवरी सैटरडे हफ्ता के रोज़, हर हफ्ता के रोज़ सुबह 11 से 2 बजे तक। जी ये प्रोग्राम का दूसरा आवर है, दूसरा घंटा है, इसमें भी हम इसी तरह से कुछ शायरी होगी, चंद गीत होंगे, बल्कि ज़्यादा गीत होंगे, थोड़ी सी शायरी होगी, आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी और फिर हम इस घंटे को भी पिछले आवर की तरह और अपनी बाकी ज़िंदगी की तरह खूबसूरत, हसीन, रंगारंग बना देंगे। जी हाँ, बढ़ते हैं हम अपने हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब और उसके बाद जी हाजरा जी की फरमाइश का गीत वो प्ले किया जाएगा हिट ऑफ द आवर के गीत के बाद।
5: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: हेलो जी, वेलकम बैक। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना हाजरा जी, आपकी फरमाइश पर। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। जीत कौर आंटी जी, थैंक यू तुहाडी कॉल दा। तुहाडे नाल गल करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इन्ना प्यार है तुहाडी गल दे विच, ते बहुत अपना अपना जिहा महसूस होंदा है। हाजरा जी, तुहाडे नाल भी इसी तरह ही है। तो ऐसा है कि अगला जो गीत होगा वो हम करेंगे अपनी प्यारी प्यारी सी आंटी जीत कौर जी के नाम। और इससे पहले हम कर लेते हैं टाइम चेक। टाइम चेक के बाद हमारी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा जी अगला गीत।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:14, यानी कि 12:14। तो अब हम चंद ही सेकंड्स बाद बढ़ेंगे अपनी कमर्शियल ब्रेक की जानिब। और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद जी होती है आपसे दोबारा मुलाकात। और जीत कौर आंटी जी, तुहाडे लई चंगा जिहा गीत मैं पुराना गीत तुहाडे ना करांगी, वो कमर्शियल ब्रेक तो बाद करने आ। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
5: Sunrise Radio.
0: वेलकम बैक सामीन जी, हम वापस आ चुके हैं अपने कमर्शियल ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं एक और गीत की जानिब जो हम करेंगे जीत कौर जी के नाम। जीत कौर जी आंटी जी, उम्मीद है तुहानू एक गीत पसंद आएगा, तो तमाम सुनने वालों भी पसंद आएगा। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, यही बात है जनाब। वाकई ज़िंदगी अजीब दास्तान ही है, पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे जा रही है, हमें कहाँ लेकर जा रही है, क्या ख्याल है। तो समीन, हम ऐसा करते हैं कि अपने अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं, और ये गीत जनाब चौधरी मुजफ्फर जी आपके और आपके तमाम दोस्तों के नाम करते हैं। आपकी कॉल मौसूल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने का। अल्लाह ताला तमाम दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फरमाए मल्टीप्लाई करके इंशाल्लाह। तो अगले गीत की जानिब बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं इस गीत के फौरन बाद, हमारे साथ रहिएगा।

देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। वाह जी वाह, पहली बार देखा है, तो इससे पहले क्या देखा था साजन की आंखों में? गुस्सा देखा था, क्या देखा था, लड़ाई देखी थी, जलसी देखी थी, क्या देखा था? पहली बार साजन की आंखों में प्यार देखा है, सेलिब्रेट करना तो बनता है ना भाई। क्या मैं डायसेक्शन करती हूँ गीतों का जनाब, अर्ज किया है। लोग ऐसे मुझे फनकार समझ लेते हैं, हंस के मिलता हूँ तो दिलदार समझ लेते हैं। दिल के ख्यालात लिखा करता हूँ मैं कागज़ पर, लोग इनको मगर आशार समझ लेते हैं। ऐसी सादा सी तबीयत का क्या किया जाए, देखभाल को हम प्यार समझ लेते हैं। आपके सामने खामोश रहूं तो बेहतर है, आप हर बात को बेकार समझ लेते हैं। जी समीर, ये तो चंद अशआर थे। अब हम बढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद ख्वाजा मोहम्मद अकरम जी, आपकी टेलीफोन कॉल मौसूल हुई और आप जा रहे हैं गीत सुनना। टिप टिप बरसा पानी, जी टिप टिप बरसा पानी स्ट्रेट होगा जी कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

टिप टिप बरसा पानी। जी सामेन, ये गीत आपने सुना जो कि फरमाइश थी ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहिब की। ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहिब, उम्मीद है आपने ये गीत पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। तो ऐसा करते हैं हम कि बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब, जो कि है, देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है। इंजॉय कीजिएगा।

0: ये तो गीत था देखो जरा देखो बरखा की लड़ी। मैंने समझा मुझे क्या हुआ है, कोई बात नहीं है, बहुत खूबसूरत गीत था, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अगला गीत पे जाने से पहले मुझे लगता है कि हमें टाइम इतना नहीं है कि हम अगला गीत प्ले करें, हम और टाइम चेक का टाइम होगा और कमर्शियल ब्रेक आने वाली है, तो ऐसा करते हैं जनाब, आपको चंद अशार सुनाते हैं, टाइम चेक करते हैं, कमर्शियल ब्रेक पर जाते हैं, फिर उसकी बात होती है आपसे एक खूबसूरत से गीत के बाद, फ्लैशबैक गीत के बाद दोबारा मुलाकात। जी अशार सुनिए। वो जज्बों की तजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे, ये उसकी आम हालत थी, ये दिल कुछ और समझा था। वो मेरे पास बैठा देर तक गजलें मेरी सुनता, वो मेरे पास बैठा देर तक गजलें मेरी सुनता, उसे खुद से मोहब्बत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कंधे पे सर रख कर कहीं पे खो गया था वो, ये एक वक्ती अनायत थी, ये दिल कुछ और समझा था। जी हाँ सामीन, ये दिल कुछ और समझा था। तो ऐसा है कि हमारा टाइम हुआ चाहता है टाइम चेक करने का, और उसके बाद हमारा कमर्शियल ब्रेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ जाते हैं 12:45, यानी कि 12:45, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक गीत होगा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
5: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

अरे चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो ऐसा है कि जो अगला गीत है वो हम गुलाम भाई आपको आपके नाम करेंगे, वो गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत है मुझे इश्क है तुझी से, उम्मीद है तमाम सुनने वाले पसंद करेंगे। इतना खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, उसकी क्या तारीफ़ करें। ऐसा करते हैं कि चंद अशार में ही तारीफ़ किए देते हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। ऐरे गैरे लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। जिंदगी तू कब तक दर बदर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। आखिरी शेर कमाल है, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे। क्या बात है, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। क्या कमाल है, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। जी गुलाम भाई एंजॉय कीजिएगा और तमाम सुनने वाले एंजॉय कीजिएगा ये मोहम्मद रफ़ी का गीत मुझे इश्क है तुझी से।

0: उम्मीद है जनाब आपने ये गीत पसंद किया होगा। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जाने जिंदगानी। जनाब बहार आती नहीं दरार को ही, हिजर अंदर से तोड़ देता है, तुमको अपनी मिसाल देता हूँ, इश्क जिंदा भी छोड़ देता है। हाय हाय हाय जनाब, अब चंद ही मिनट बाकी हैं हमारी न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाते वक्त और जाने को, और ऐसा होगा कि अगला जो आवर होगा उसमें आपकी लाइव कॉल्स ली जाएंगी। लाइव कॉल्स के लिए आज का जो टॉपिक है वो है तन्हाई। तन्हाई जनाब ऐसा भी होता है कि हम एक हजूम में भी तन्हा होते हैं। हमारी अपनी अंदर की जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, हम बहुत से दोस्तों के दरमियान भी समटाइम्स अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। हम अपने आप को फैमिली में भी समटाइम्स तन्हा महसूस करते हैं। ऐसा भी होता है कि हमारे साथ हमारा साथी मौजूद होता है लेकिन हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। तन्हाई पे बात करेंगे, आपके क्या ख्यालात हैं तन्हाई पे, और ऐसा भी है कि अगर तन्हाई पे आप कुछ अशार सुनाना चाहें तो भी हम तन्हाई पे अशार भी सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी एक बहन है वो पोइट्री अक्सर टॉपिक्स पे लेकर आती हैं। तन्हाई पे बात कीजिएगा, तन्हाई पे अशार सुनाइएगा, तन्हाई को कैसे काटना चाहिए, तन्हाई की इबादत क्या होती है, तन्हाई में क्या ख्यालात होने चाहिए, तन्हाई में किस किस चीज़ से बचना चाहिए, बस बात हो तो तन्हाई की हो, क्या ख्याल है जी जनाब। तो अगले आवर में आपकी लाइव कॉल्स ली जाएंगी। अगर आप तन्हाई के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं और आप ऑन एयर नहीं भी जाना चाहते तो आप मुझे गीत के दौरान फ़ोन करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं और फिर मैं आपकी बात सामिन तक भी पहुंचा दूंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं लेकिन वो ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, तो हम उनको भी डिस्रिगार्ड नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आप ऑन एयर बात करें तो फिर की गल बात है जी, फिर तो सब तो चंगा है। तो ऐसा करते हैं, बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब, मिलते हैं खबरों के उस पार, हमारे साथ रहिएगा।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 1. There's a warning the Premier League risk damaging their own product if they take severe action against Manchester City. The club's appealing the findings of an independent commission which found them guilty of on 114 out of 115 charges of breaching financial regulations. They still deny any wrongdoing, and football finance expert Stephen Borson says stripping them of titles will cause a big headache.
3: The Premier League will have to somehow clear up who won what over the last number of years. That in itself is a problem. There is a risk of self-sabotage to an extent.
2: Iran is waiting on a response from the US after setting out plans to reopen the Strait of Hormuz within a week. Tehran says that's if Washington makes changes, including waiving oil sanctions. Detectives are reviewing enhanced CCTV footage 27 years after Jill Dando was murdered. They'll be looking back at what happened at Putney Bridge train station in West London, close to where the TV presenter was shot dead in 1999. Angela Rayner's criticised plans from her cabinet colleague to make it harder for migrant workers to claim settled status in the UK. The Communities Secretary has told The Times that would change the goalposts. Ministers insist university remains a strong investment for most students, despite the number of them questioning that. A study's found 60% are worried their degree won't lead to a job that justifies the cost of their student loan. The government says research shows going to uni delivers significant benefits. Vivian Stern, who's the chief executive of Universities UK, agrees.
4: Overall, on average, graduates do better in terms of things like earnings. No individual is an average, right? But it does, I think, add weight to the argument that if you're looking to sort of build resilience in what's going to be an uncertain labour market, a degree is still a very sensible investment.
2: More than 500,000 people are expected to join Pope Leo's open-air mass in Paris today. It marks the first papal visit to France in 18 years. And that's the latest.
0: वेलकम बैक समेन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, आखिरी आवर में आपको खुशामदेद कहते हैं, जी आयानु कहते हैं एंड वेलकम कहते हैं। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 FM और 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डेप पर जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में। आप सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात को एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से www.sunrise.radio के थ्रू। समय एक दफा फिर आपको इस बात का की याद दिला दें जिन लोगों ने अभी टेलीफोन, सॉरी नॉट टेलीफोन, अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं। मैं हूं नाहिद चट्ठा, मेरा प्रोग्राम हुआ करता है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 to 2, एवरी हफ्ता के रोज़ 11 से 2 बजे तक। तो ये जो आवर है 1 to 2 वाला, ये आवर हमारा होता है डिस्कशन आवर, जिसमें हम किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं। कभी हमारे साथ मेहमान होते हैं, कभी हम आपस में बात करते हैं, आपकी लाइव कॉल्स होती हैं और फिर हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। आज हम बात करेंगे तन्हाई के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं। तो अपने कीमती ख्यालात से हमें ज़रूर नवाजिएगा। हमें टेलीफोन करना हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं सनराइज रेडियो स्टूडियो में। टेलीफोन नंबर है 01274 जो कि हमारा ब्रेडफूड का कोड है, और डायरेक्ट लाइन नंबर 30666 यानी कि टेलीफोन नंबर डायल कीजिएगा 01274 30666। जी एक और बात आपकी याद दहाने के लिए कि सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 यानी कि 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर्स क्लब मेंबर्स हु जॉइन फ्री। सो टू जॉइन फ्री नाउ एट sunrise.radio एंड कीप लिसनिंग फॉर मोर डिटेल्स। तो ऐसा है कि सनराइज रेडियो का जो लिसनिंग क्लब मेंबरशिप है वो आप फ्री ले सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आप वोट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, वेन्यूज को, आर्टिस्ट यू लव। तो जनाब तन्हाई हमारा आज का टॉपिक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले गीत की जानिब जो कि है तोहफा तोहफा तोहफा, और उसके बाद तन्हाई के गीत होंगे। ये हमारा हिट ऑफ द आवर गीत है, बढ़ते हैं इस गीत की जानिब, एंजॉय कीजिएगा।
4: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी हाँ समीन, तोहफा प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। आपने एंजॉय किया ये गीत। इसके बाद हम ऐसा है कि अगला गीत अगर हम लगाएंगे तो हमारी हो जाएगी कमर्शियल ब्रेक का टाइम, तो फिर क्या किया जाए। आपको एक दफा से फिर याद दिला दिया जाए कि जनाब आज का हमारा टॉपिक है तन्हाई। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो टेलीफोन आप कर सकते हैं 01274-306666 पर, और टॉपिक पर बात कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, किसी हालत में भी तन्हा नहीं होने देती है, यही एक खराबी मेरी तन्हाई में। जी ऐसी ही बात है, तन्हाई में यही खराबी है। एक सफीना है तेरी याद अगर, एक समंदर है मेरी तन्हाई। तन्हाई पे बहुत खूबसूरत अशआर हैं, बहुत बातें की गई हैं, लेकिन मैं सुनना चाहूँगी आपसे तन्हाई के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा कर लेते हैं कि हम टाइम चेक करते हैं, टाइम चेक के बाद हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं, और फिर आपकी टेलीफोन कॉल, अगर आप ऑन एयर बात करना चाहें या आप ऑफ एयर बात करना चाहें, तन्हाई पर मुझे इंतज़ार रहेगा 01274-306666। जी हाँ, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है और आपके लिए लाइव कॉल्स के लिए लाइंस ओपन हैं। तो ऐसा है कि हमारी एक कॉलर मौजूद है, मिसेस रॉय डब्ल्यू, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: अलैकुम सलाम एंड वेरी गुड आफ्टरनून यू टू।
0: गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। कैसी हैं आप?
1: बस खुदा की मेहरबानी एंड आपकी दुआ में बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
0: जबरदस्त, और ऐसा ही रहिएगा।
1: थैंक यू सो मच, दुआ कीजिए।
0: डेफिनेटली। अच्छा बताइए, तन्हाई के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
1: कभी भी तन्हाई नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा,
1: किसी न किसी के साथ रहना चाहिए, तो मिल बांट के सुख दुख जो होता है ना,
0: जी जी,
1: तो मिल बात के में शामिल करेंगे तो तन्हाई में तन्हाई जैसा नहीं लगेगा, फील नहीं होगा।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि अपने दुख सुख में लोगों को शामिल करें और तन्हा महसूस ना करें।
1: जी सुनिए, मेरी उर्दू अच्छा नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं बोलती हूँ, तो बंगा बंगा उर्दू में थोड़ा सा आपको कह दिया।
0: आप नहीं, ये कैसे समझ लिया आपकी उर्दू अच्छी नहीं है? जी आपकी उर्दू बहुत खूबसूरत है। जुबान एक टूल होती है आप अपनी बात समझाने के लिए। आपकी बात हमें समझ आ रही है, तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है।
1: थैंक यू सो मच।
0: आपका पैगाम भी बहुत खूबसूरत है कि तन्हा नहीं रहना चाहिए, दुख सुख में शरीक करना चाहिए और शरीक होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बहुत शुक्रिया।
1: दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज व्हाट आई बिलीव।
0: आई रियली एग्री विद दैट। मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल।
1: मेरी तरह से सभी सुनने वालों के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून एंड लुक आफ्टर इच अदर, यू नो एवरीवन इच अदर।
0: थैंक यू सो मच।
1: एक क्लासिक गाना मेरे लिए भी लगा दीजिए।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली, अगला गीत आपके लिए ही लगाएंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू, हैव अ गुड डे।
0: एंड यू टू, थैंक यू, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय बाय।
0: जी समीन, ये तो हमारी बहुत ही प्यारी बात की हमारी कॉलर ने, मिसेस रॉय डब्ल्यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आते रहा कीजिए हमारे प्रोग्राम में, हमें ज़रूरत होती है अच्छे समझदार लोगों की, और हमें अच्छी वाइज बात करने की, क्योंकि बातें जिस तरह मैं पहले कहा करती हूँ कि सबको पता होती हैं, याद दिहाने की ज़रूरत है। और कितनी अच्छी उन्होंने बात की, तन्हा नहीं रहना चाहिए, सुख में शरीक होना चाहिए और शरीक करना चाहिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी से टाइम चेक करते हैं और फिर कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं.
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी समय इस वक्त हमारी घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:16, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब. कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं. टॉपिक है तन्हाई, ज़रूर बात कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा 01274-306666 पर. बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274-056-014. सोफी ज्वेलर्स.
5: Do you own a business? Then get your business seen with Sunrise Radio. Absolutely free. Add

वेलकम बैक सामिन, आपने कमर्शियल ब्रेक सुना और हम तन्हाई पर बात कर रहे हैं। अगर आप बात करना चाहें तन्हाई से रिलेटेड, कुछ एडवाइस देना चाहें, जिस तरह मिसेस रॉय ने हमें एडवाइस दिया, आप भी एडवाइस भी कर सकते हैं। तन्हाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कोटेशन सुनाना चाहते हैं, कुछ अशार सुनाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें आप फ़ोन कीजिएगा स्टूडियो में 01274-306666 पर। मिसेस रॉय, आपके लिए खूबसूरत सा गीत आपके नाम करती हूँ, तन्हाई तन्हाई, एंजॉय कीजिएगा।

तन्हाई तन्हाई तन्हाई जी, आपने ये गीत सुना और आपने उम्मीद है पसंद किया होगा। ऐसा करते हैं कि चंद अशआर तन्हाई पे बात करते हैं और तन्हाई के बारे में सुनाते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। मेरी तन्हाई को उसने और तन्हा कर दिया, डॉक्टर नजमा शाहीन के ये चंद अशआर हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, बहुत अच्छा लिखती हैं। मेरी तन्हाई को उसने और तन्हा कर दिया, झील सी आंखें थीं इनको खुश्क सहरा कर दिया। हिजर अच्छा था जब इसको सोच कर जीते थे हम, इस फरेबे विसल ने दिल को तो प्यासा कर दिया। गुजरे लम्हे अश्क बनकर आंख में रोशन हुए, गुजरे लम्हे अश्क बनकर आंख में रोशन हुए, उसकी यादों ने अंधेरे को भी उजाला कर दिया। इन लबों पर आज भी उसकी खुशी की है दुआ, इन लबों पर आज भी उसकी खुशी की है दुआ, जिसने मेरी हर खुशी पर गम का साया कर दिया। उसकी यादें खुद ब खुद शाहीन इसमें आ गईं, उसकी यादें खुद ब खुद शाहीन इसमें आ गईं, मैंने बस इतना किया कि दिल को रस्ता कर दिया। क्या खूबसूरत आखिरी शेर है। उसकी यादें खुद ब खुद शाहीन उसमें आ गईं, मैंने बस इतना किया कि दिल को रस्ता कर दिया। बहुत खूबसूरत अशआर, मेरी तन्हाई को उसने और तन्हा कर दिया, झील सी आंखें थी इनको खुश्क सहरा कर दिया। तो जनाब, बात हो रही है तन्हाई पर। अगर आप तन्हाई के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, कुछ कोटेशन सुनाना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम। यू कैन कॉल अस ऑन 01274-306666। जी हाँ, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगर आप तन्हाई पे बात करना चाहें तो ज़रूर हमें इस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, बात कीजिएगा, कोई एडवाइस दीजिएगा या कुछ सुनाना हो तो ज़रूर सुनाइएगा। तो समीन, हम चंद ही सेकंड्स में बढ़ेंगे अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारा एक और गीत होगा जो कि है तन्हा जिया ना जाए। जी हाँ, उम्मीद है वो गीत भी आप पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे गीत को। तो बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।

तन्हा जिया ना जाए। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपने सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बहन की कॉल मौसूल हुई, वो ऑन एयर बात नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने तन्हाई के बारे में ये कहा है कि तन्हाई जो होती है वो इंसान को अंदर से खा जाती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और इंसान अपने आप को, बल्कि जब तन्हा महसूस करता है तो और ही उसमें बहुत सी बीमारियां समटाइम्स पैदा हो जाती हैं।

लगता है सामेईन कि हम भरी महफिल में होते हैं, हम सब लोगों के दरमियान बैठे होते हैं, तो क्या होता है कि इंसान जो होता है वो अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करता है, दोस्तों की महफिल में भी अंदर से अकेला महसूस करता है। तो इस ऐसे टाइम पर हमें चाहिए कि अपने आप को मजबूत करें, बल्कि मैं ये समझती हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो शख्स अपने आप को तन्हाई में कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को तन्हाई में सैड होने से बचा सकता है, तो वो शख्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है वो शख्स जो तन्हाई में अपने आप को अपने आप के साथ, अकेले के साथ, खुद के साथ जीना सीख लेता है। वो अपनी ओन अपनी कंपनी एंजॉय करने लग जाता है, वो शख्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को हम इतना स्ट्रांग कर लें कि कुछ भी हालात हों, वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन, हमें अपने ब्रेन को इतना ट्रेंड करना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल करें, खुद हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल ना करे, हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। अगर हम तन्हा हैं, हम अकेले हैं, तो हम अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ढूँढ लें, अपने ऐसी अपनी सोचों को डायरेक्शन दे दें कि हमें वो जो तन्हाई है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए, इंस्टेड के वो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाए। कई लोगों को बहुत आदत होती है अकेले रहने के से, वो डरते हैं, लेकिन कुछ लोग जब अकेले रहने के आदि हो जाते हैं, उनको तन्हाई से वो दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे दरमियान जो कि वो अकेले रहते हैं, वो घर में अकेले रहते हैं। तो बहुत से लोग हैं फैमिली के साथ भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेले रहते हैं। तो इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि ख़ुद के साथ आप कैसे टाइम गुजारते हैं, अपनी तन्हाइयों को पाक कैसे रखते हैं, अपनी तन्हाई में आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो बजाय सेल्फ डिस्ट्रक्शन के सेल्फ कंस्ट्रक्शन बन जाए, क्योंकि आपकी तन्हाई आपको तोड़े ना, आपको मज़ीद मजबूत बना दे। तो आपको हम अजान ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं अब 2 मिनट में, तो चाहूँगी कि मैं गीत की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि फिर हम उसके बाद गीत पे जाएंगे अजान ब्रेक के बाद। आपको चंद अशार सुनाती हूँ। एक रात हुई बरसात बहुत, एक रात हुई बरसात बहुत, मैं रोया सारी रात बहुत, हर गम था ज़माने का लेकिन मैं तन्हा था उस रात बहुत, फिर आँख से एक सावन बरसा, जब सहर हुई तो ख्याल आया, वो बादल कितना तन्हा था, वो बादल कितना तन्हा था जो बरसा सारी रात बहुत। जी हाँ, तन्हाई पर बात हो रही है सामेईन। अगर आप हमें फ़ोन करके तन्हाई के बारे में बात करना चाहें, तो आप हमें अगर ऑन एयर बात करना चाहते हैं तो भी फ़ोन कीजिएगा 01274-30666 पर, और अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, तो जब हम ऑन एयर नहीं होते तो ब्रेक्स में होते हैं, तो फिर आप हमें उस दौरान टेलीफोन करके बात कर सकते हैं। जी, टेलीफोन नंबर वही है 01274-30666। बात हो रही है तन्हाई की, तो देखते हैं कि तन्हाई पर आपके क्या ख्यालात हैं। इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे कि हम तन्हाई पर बात भी करते रहेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेते रहेंगे, और हम गीत भी प्ले करते रहेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, बढ़ते हैं अजान ब्रेक की जानिब। अजान ब्रेक के बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
1: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.
2: जी हाँ सामिन, वापस मुलाकात आपके साथ अजान ब्रेक के बाद। अजान के दौरान और ब्रेक के दौरान हमारी बात हुई वफा जी से। वफा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टेलीफोन कॉल, और आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है वो मुझे दिया। आपने कहा कि जो तन्हाई होती है, तन्हाई के दौरान ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ओवर थिंकिंग जो होती है, वफा जी ने कहा कि वो बहुत नुकसानदेह होती है और वो बहुत से आपके रिश्ते भी खा जाती है। तो उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को ये पैगाम दे दें कि कोशिश करें, अवॉइड करें कि ओवर थिंकिंग ना करें। ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ओवर थिंकिंग के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश कीजिए कि अगर आप तन्हा हैं तो आप अच्छी चीज़ें याद करें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। उनका कहने का मतलब है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बहुत शुक्रिया वफा जी आपकी टेलीफोन कॉल का। ऐसा मैंने, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं। अगर आप तन्हाई पे बात करना चाहते हैं या अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिएगा 01274306666 पर। मैं टाइम चेक करती हूँ और टाइम चेक के बाद हम बढ़ेंगे अपने फ्लैशबैक की जानेब।
3: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:46, यानी कि 1:46। बढ़ते हैं फ्लैशबैक गीत की जानिब। रहीम शाह की आवाज़ में तन्हाई पर गीत है, एंजॉय कीजिएगा। और इस दौरान अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें, तन्हाई पर बात करना चाहें, तो प्लीज़ आप फ़ोन कीजिएगा 01274306666 पर।
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: जी सामीन, हम ऑन एयर चलते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, अजीज भाई गुजरात से, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है मैम जी?
0: आपकी जो आवाज़ है थोड़ी कम है, थोड़ा हेलो।
1: जी, आपकी आवाज़ आ रही है।
0: जी, अब आपकी मुझे आवाज़ आई बहुत अच्छे से। क्या कहना चाहेंगे तन्हाई के बारे में?
1: जी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे आप अपने प्रोग्राम में तन्हाई के बारे में, और आपने जो इसमें भी कॉलर्स आए हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। असल में मैम जी, तन्हाई दो तरह की होती है।
0: जी,
1: एक तन्हाई तो वो है जो लोग आपके गलतियों और कोताहियों की वजह से आपको बिल्कुल तन्हा कर देते हैं।
0: जी,
1: और ये जो तन्हाई है ये बड़ी खतरनाक है, ये इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती है।
0: 100%।
1: तो दूसरी तन्हाई है जो आप खुद दूसरे लोगों के रवैये से, उनके अखलाक की वजह से, उनके बद किरदार की वजह से आप अलग होते हैं। और जब ये वक्त आप पे आता है कि आप खुद से तन्हा होते हैं, तो यकीन करें कि इंसान की कामयाबी वहां से शुरू हो जाती है।
0: वाह, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। एग्जैक्टली ऐसा ही है।
1: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिनट की मिसाल दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआशरे से, लोगों से तंग होकर जब अलग हुए थे, गारे हिरा में चले जाते थे तन्हाई में, और वो 13 साल तन्हाई जो है वो आपको खुदा से मिला देती है।
0: वाह,
1: तो यही मेरा मैन जी पैगाम था कि जब आप तन्हा खुद होते हैं लोगों के रवैये की वजह से, लोगों के अखलाक की, बद अखलाकी की वजह से, लोगों के बैड रवैये की वजह से, तो फिर आप अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों के बारे में जान जाते हैं, यहाँ तक कि आप खुदा को भी जान जाते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। समटाइम्स जो तन्हाई होती है वो हमारे अंदर की, हमारी बसीरत की बहुत सी खिड़कियाँ खोलती है।
1: बेशक ऐसा ही है।
0: इंसान खुद को भी समटाइम्स पहचानना शुरू कर जाता है तन्हाई में।
1: बेशक, ज़ाहिर है, मन आरफा फ़क़द आरफा नफ़्सहु फ़क़द आरफा रब्बा, जो ये हदीस है कि जिस इंसान ने अपने आप को पहचान लिया है उसने खुदा को पहचान लिया है, तो अपने आप को इंसान उसी वक़्त पहचानता है जब वो अकेला होता है।
0: वाह, बहुत खूबसूरत बात, कमाल है, बहुत खूबसूरत बात जी।
1: मैम जी, तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम और दुआएं अर्ज करें, इसलिए कि काफ़ी अरसे के बाद मैंने आपके प्रोग्राम में शिरकत की है, और मेरी दुआ है कि सनराइज रेडियो इसी तरह दमकता चमकता आप जैसे अजीम लोगों की वजह से ये हमेशा कायम और दायम रहे।
0: ये हमारे लिसनर्स की वजह से कायम और दायम है, और आप जैसे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े रहे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपकी टेलीफोन कॉल का, और आपकी हर बात बहुत बहुत कीमती और बहुत खूबसूरत थी। थैंक यू वेरी मच
1: मैम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। हसामीन, हमारे ये तो थे कॉलर जो पाकिस्तान गुजरात से कॉल कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की। हम अब प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी बातों के साथ ही। बहुत ही प्यारी बात ये वाली कि जब इंसान तन्हा होता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है, वो बहुत सी चीज़ों को पहचानने लग जाता है। उन्होंने हदीस का हवाला दिया, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हिरा में तन्हाई में जाके इबादत करने का हवाला दिया। लोगों के गलत रवैये, लोगों की बैड ट्रीटमेंट आपके साथ जब होती है तो इंसान अपने आप को बेहतर समझता है, कि बजाय कि वो रॉन्ग लोगों की कंपनी में हो या इस टाइप के टॉक्सिक लोगों की कंपनी में हो जो उसको तकलीफ़ देते हैं या उसकी मेंटल वेलबींग के लिए अच्छे नहीं है, तन्हा हो जाना ही बेहतर होता है। बहुत ही खूबसूरत बातें भाई, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। आते रहा कीजिए, अपने खूबसूरत ख्यालात से हमें नवाजते रहा कीजिए। समय, जैसा कि हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपको इस बात की अनाउंसमेंट कर दूं कि नेक्स्ट सैटरडे जो हमारा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, उस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे फेवरेट मेहमान मौजूद होंगे, यानी कि मेंटल हेल्थ की डॉक्टर डॉक्टर सारा अहमद हमारे साथ मौजूद होंगी और जैव हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्होंने हमारे साथ कुछ प्रोग्राम्स किए जो लोगों ने बहुत पसंद किए। हमने मेंटल हेल्थ के मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात की और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्रोग्राम के शुरू होते ही नेक्स्ट सैटरडे को आप मुझे ज़रूर अपने सवालात दे दीजिएगा, या फिर अगर आप उनसे लाइव कॉल भी करना चाहें तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सारा और सारा अहमद और हमारे साथ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे जैव। बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत काम किया उन्होंने मेंटल हेल्थ पे, हॉस्पिटल में अभी भी काम कर रहे हैं। बहुत उनका एहसान होता है कि वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हमारे लिसनर्स के फ़ायदे के लिए हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगी। अपना अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए सनराइज रेडियो। खुदा हाफिज़।
2: ब्रॉडकास्टिंग टू द एशियन कम्युनिटी 24 आवर्स अ डे, दिस इज सनराइज रेडियो ऑन द आवर एवरी आवर। दिस इज सनराइज रेडियो नेटवर्क न्यूज।
3: City's expected to challenge a reported guilty verdict to all but one of 115 charges of financial irregularities. The club, which has always denied wrongdoing, says the case with the Premier League is ongoing. Sanctions could include fines, point deduction and even expulsion from the top flight of English football. Sports writer Henry Winter doesn't expect any quick decisions.
4: They are incredibly likely to appeal, but running alongside that process, I'm sure, will be rival clubs, accountants and lawyers who will be examining this and see if they should have any recompense.
3: Hundreds of thousands have packed onto the streets of Paris as the Pope Mobile parade begins. Pope Leo's celebrating an open-air mass in the French capital. He's been seen blessing babies. It's the first papal visit to France in 18 years. Earlier, the pontiff visited a centre which offers support to migrants and refugees.
5: I offer a special word of thanks to those who have shared their testimony. The name of your support and social integration centre, which refers to Saint Paquita, encourages us to recognise the fundamental role of women in building a civilization of love.
3: Iran's waiting for the US to respond to plans to reopen the Strait of Hormuz within a week. Tehran says that if Washington lifts its naval blockade, waives oil sanctions and observes a ceasefire. Angela Rayner has criticised plans from her cabinet colleague to make it harder for migrant workers to claim settled status in the UK. The community's secretary feels that would change the goalposts. We'll have the Formula One result in just a moment, but first, Scotland start a new era under manager Sebastian Poggenoli shortly. The Belgian takes charge for the first time for the Nations League game in Slovenia. And George Russell has won the Azerbaijan Grand Prix in Baku. It's the third victory of the season for Mercedes. Max Verstappen was second.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

अंततः हिंसा के हिमायती रहे जो, उनका मुल्क बर्बाद हुआ और गांधी जी के रास्ते पर चलकर वतन अपना आजाद हुआ।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: अटकन बटकन दही चटोकन मुसुआ मोटा रुपया खोटा माला टूटी बेबी छोटी
1: मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Experience something truly spectacular as the internationally renowned Flower Carpet comes to the UK for the very first time. From Thursday the 24th to Sunday the 27th of September, Centenary Square in Bradford will be transformed by over 300,000 colourful flowers. Visit for free during the day or see the carpet illuminated with a stunning sound and light show each evening from 7:30. Don't miss this once-in-a-lifetime event. Event produced by Bradford Culture Company.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें

0: ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਕੁਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
1: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ
0: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ
1: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪੌਂਡ ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ
0: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ
1: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274488935
2: मूव फॉर 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक कोई प्रेशर नहीं कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं आप भी ज्वाइन करें सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10
3: समय साड़ी दुनिया दे तमाम पंजाबियों नू अपने वालों सत श्री अकाल कह रहा हाँ कबूल करो इस खुशी दे मौके ते जिथे एडे जश्न मनाए जा रहे ने अज इंडी सगू वास्ते उस दी एक खूबसूरत पेशकश दे विच जो मेरा सब तो फेवरेट गीत है बाबियां दे चल चलिए

0: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935

0: music.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3538. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन ती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: नी उठो नी कुड़ियो, तुसी वेलियां बैठियां की करी जांदियां? व्याह वाला घर आ, गिद्दा गुद्दा पाओ, जरा व्याह दा माहौल ता बनाओ।
1: नी खड़जो, मैं भाभी नू लेके आनी आ।